नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस

0: हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया, ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट।

0: हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
0: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
5: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए

0: अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
3: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को 1 महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान

0: व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में RG कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर $100 billion इन्वेस्टमेंट एंड 1 million जॉब्स अंडर इंडिया EFTA एग्रीमेंट एट बिजनेस एंड रिसर्च समिट इन ओस्लो, नॉर्वे। Prime Minister Modi to meet leaders of all 5 Nordic nations at 3rd India-Nordic Summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RG Kaur Medical College Sandeep Ghosh in financial irregularity case. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad secure playoff berth, beating Chennai Super Kings by 5 wickets. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under and the consequent creation of 1 million jobs in India.
3: एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 billion इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है, और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना मैं आपको विश्वास से कहता हूं ये हमारी गारंटी है।
2: Mr. Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing the country's scale, growing energy demands, climate commitments and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen and clean energy.
3: 2030 तक हमने 500 gigawatt clean energy और 5 million ton green hydrogen produce करने का target रखा है। ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
2: The summit was also attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from the Norwegian and Indian business and research communities. Early in a gesture towards closer relations, Prime Minister Modi was awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of Norway. On Prime Minister's visit to Norway, Secretary West in the Minister of External Affairs C.B. George said that India welcomes the decision by Norway to join the Indo-Pacific Oceans Initiative as both the countries are leading maritime nations.
4: Recognizing the ambitious maritime Amrit Kal Vision 2047 of India, both leaders have called for scaling up the blue economy partnership, including in shipbuilding, green shipping, ship recycling, developing port infrastructure, training of seafarers, fisheries, aquaculture, and greening of ports.
2: Prime Minister Narendra Modi will attend the third India-Nordic summit today in Oslo, aimed at strengthening India's strategic partnership with Nordic nations in areas such as technology, renewable energy, defence, sustainability and trade. We have more from our correspondent.
5: Prime Minister Narendra Modi, along with his counterparts from five Nordic countries, will attend the third India-Nordic summit today. This summit will build upon the increased sectoral cooperation between India and the Nordic countries since the previous summit held in Copenhagen in 2022. The areas in focus are tech and innovation, sustainability, renewable energy and digitization. With TEPA in force, the summit will try to forge deeper trade and investment linkages. India's bilateral trade with this bloc currently stands at $19 billion. This summit will help in expanding our multifaceted cooperation with the region. It will also provide an opportunity to exchange views on global and regional issues of mutual interest. Prime Minister Modi will also hold bilateral meetings with the Prime Ministers of Denmark, Iceland and Finland on the margins of this summit. Sangeeta Godbole, Akashvani News, Oslo.
2: On the last leg of his five-nation visit, Prime Minister Narendra Modi will arrive in Rome, Italy on a two-day state visit today at the invitation of his Italian counterpart Giorgia Meloni. Prime Minister Modi will have bilateral talks with Prime Minister Meloni. He will also call on the President of Italy, Sergio Mattarella. Mr. Modi is scheduled to hold talks with business leaders to further promote trade and investment between the two countries. Defence Minister Rajnath Singh has described Operation Sindoor as a testament to India's transformation into a strong, confident and capable nation. Addressing the Indian diaspora in Hanoi yesterday, Mr. Singh asserted that while India remains committed to the no-first-use policy, it will not succumb to nuclear blackmail and stands ready to respond firmly to any enemy misadventure. He highlighted India's growing stature on the international stage due to the unprecedented progress achieved under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda held high-level bilateral meetings with counterparts and representatives from Thailand, Iran, the Netherlands, Sweden and Mauritius. The meeting was held on the sidelines of the 79th World Health Assembly in Geneva yesterday. In a social media post, Mr. Nadda said the discussions focus on strengthening cooperation in digital health, pharmaceuticals, resilient public health systems and advancing universal health coverage. Health Minister Nadda is currently in Switzerland to participate in the 79th World Health Assembly, which began yesterday and will continue till the 23rd of this month. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Judges Inquiry Committee investigating allegations concerning Justice Yashwant Verma submitted his report to the Lok Sabha Speaker Om Birla at the Parliament House. It was presented in accordance with the statutory requirements

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर म्यूजिकली योर्स, और मैं हूं आपका अपना RJ दोस्त रेहान। कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूं जिसका नाम है मस्त मुंबई, और मेरे साथ इस वक्त हैं हमारे को होस्ट RJ अनूप। अनूप
2: रेहान जी, धन्यवाद मेरा इंट्रोडक्शन करने के लिए। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, शुभ प्रभात।
1: तो चलिए आगाज करते हैं हम दोनों इस कार्यक्रम का जिसका नाम है मस्त मुंबई।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: तो 8:45 हो गए हैं दोस्तों, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 MHz पर, म्यूजिकली योर्स। तो आज जैसा कि आप जानते हैं 19 मई है और आज का दिन है मंगलवार। मस्त मुंबई कार्यक्रम में आज का सेगमेंट है कल, आज और कल। और आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे मुंबई और महाराष्ट्र की संस्कृति की और त्योहारों की। अनूप है मेरे साथ। अनूप, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मुंबई एक ऐसा शहर है जहां सपने दौड़ते भी हैं और हमारी लोकल ट्रेनें भी सुबह से ही दौड़ने लगती हैं। इसके अलावा एक तरफ जहां बप्पा की आरती होती है, उनकी जय जयकार होती है, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबईकरों का नाश्ता भी शुरू हो जाता है। वड़ा पाव का एक तरफ स्वाद रहता है, तो दूसरी तरफ बॉलीवुड की भी चमक रहती है और मराठी संस्कृत की आत्मा मुंबई में तो बसती ही है। यूं बोल सकते हैं कि अखा मुंबई अपन का है। क्यों अनूप,
2: क्या बात कही आपने रेहान, और क्या बात, मतलब क्या कहें मुंबई के बारे में। देखिए, मुंबई की सुबह ना, सुबह समुद्र के किनारे दौड़ते हुए लोग जो होते हैं, उनकी जो एक डिसिप्लिन वाली भागा दौड़ वाली ज़िंदगी के बीच में अपने लिए समय निकालने

0: अगर हम बात करें तो मजा ही आ जाता है उन्हें देख के। और उसके साथ साथ अगर आप सुबह सुबह मुंबई की गलियों में जाए या कभी भी चले जाए तो वो जो एक कटिंग चाय की कहीं ना कहीं से जो एक खुशबू आ ही जाती है, और स्टेशन की ओर जो भागते हुए लोग दिखते हैं हमें, तो मुंबई मुझे ऐसा लगता है रियान कि हर सुबह अपने आप में एक नई कहानी लेकर आती
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अगर आप ट्रेन की बात करें जैसा आपने कहा, तो चर्च गेट से लेकर दहानू तक, या तो फिर हम कह लें कि CSMT जो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, वहाँ से लेकर जो ट्रेनें चलती है कसारा कर्जियत या पनवेल तक, मुंबई लगता है हर दिशा में भागती और कभी रुकती ही नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: और शायद यही इस शहर की एक बहुत बड़ी पहचान है। और यह कहना गलत नहीं होगा रेहान कि शायद मुंबई एक शहर नहीं पर एक जज्बा है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। और चलिए अब कार्यक्रम के इस मोड़ पर सुनते हैं बप्पी लहरी, विशाल दल्लानी और साथियों की आवाजों में ये खूबसूरत गीत।

0: 8:56 और अनूप हमारे साथ हैं इस वक्त और आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई कार्यक्रम। और मस्त मुंबई में हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र और मुंबई की संस्कृति की। महाराष्ट्र की संस्कृति जितनी विशाल है उतनी ही रंगीन भी। यहाँ संत परंपरा है तो छत्रपति शिवाजी महाराज का गौरवशाली इतिहास भी है, लावणी का संगीत है और लोक कला की गहरी जड़ें भी हैं। तो पुणे को सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। वहीं कोल्हापुर को अपनी परंपराओं के लिए मशहूर माना जाता है और यहाँ का हर शहर अपनी एक अलग पहचान रखता है। क्यों अनूप, क्या कहेंगे महाराष्ट्र की संस्कृति के बारे में?
1: बिल्कुल, और जो विविधता है यहाँ पर वो काफ़ी रंगीन है जैसा आपने कहा। तो इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे जब गणपति बप्पा मोरिया की गूंज उठती है ना रिहान, तो पूरा महाराष्ट्र में एक जल्लोश हो जाता है, कि ऐसा कह सकते हैं कि पूरा महाराष्ट्र क्रेजी हो जाता है भक्ति में। तो चलिए इसी बात पर एक बहुत ही शानदार गाना हम अपने श्रोताओं को सुना देते हैं।

0: Response Digital Banking सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: EKYC
1: NEFT RTGS
0: IMPS
1: Cosmos रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: UPI जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट Cosmos बैंक में जरूर होना चाहिए.
1: Cosmos Cooperative Bank, Enriching Life.
2: एक दीवाना शहर में,
3: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी.

0: नमस्कार, 5 मिनट हो गए हैं दोस्तों, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर म्यूजिकली योर्स। FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। और मस्त मुंबई में हम बात कर रहे हैं आज, कल और कल की, और इसी के तहत आज का सेगमेंट है महाराष्ट्र की संस्कृति, और साथ ही साथ मुंबई की बात ना हो अनूप तो फिर अधूरा है, और मुंबई की बात होती है तो फिर बॉलीवुड का जिक्र ना किया जाए तो फिर कैसे अधूरा रह जाएगा मुंबई की बात करना। और जब भी हम मुंबई की बात करते हैं तो चमक दमक ग्लैमरस की ही बातें होती हैं, क्या कहेंगे मुंबई की फिल्म सिटी की चमक, मरीन ड्राइव की शाम और बांद्रा की गलियों की जब बात होती है तो क्या ख्याल आता है। ये सब फिल्मों में आ चुका है और फिल्मों का हिस्सा बन चुकी है कहीं ना कहीं। राज कपूर से लेकर शाहरुख खान तक की जितनी भी फिल्में हैं अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक झलक हम देखते ही हैं मुंबई की किसी किसी गली को, क्या कहेंगे।
1: बिल्कुल, और देखिए मुंबई में कितने हज़ारों लाखों लोग हर महीने अपने सपने लेकर आते हैं, और आपने जैसा कहा बिल्कुल ठीक कि मरीन ड्राइव मन्नत और जलसा प्रतीक्षा के सामने लोग राट आके रहते हैं कि किसी दिन वो भी अपना सपना ऐसे ही मुंबई में साकार करेंगे। और चमक धमक वाली जो इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उसमें अपना एक नाम बड़ा करेंगे। और देखिए कि मुंबई किस्मत बदलता भी है, हर शुक्रवार जहाँ एक सितारा चमकता है तो कुछ शुक्रवार ऐसे भी होते हैं जहां कोई सितारा गुम भी हो जाता है रेहान, और यही कहानी है मुंबई या फिल्म जगत की, या इसकी नींव जो है दादा साहब फाल्के जी ने यही रखी थी। और ऐसे तो देखिए काफ़ी खूबियां हैं, और फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण मुंबई जो है वो सभी की आंखों का एक सितारा है भारत।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मुंबई पर फिल्में भी कई बन चुकी हैं, यहाँ की संस्कृति की, यहाँ के इतिहास की, और अगर हम बात करें यहाँ के सपनों की जो यहाँ से दूर दराज से या दूसरे देशों या दूसरे स्टेट से यहाँ पर आते हैं अपने सपने को साकार करने के लिए, खासकर फिल्मों में काम करने के लिए, उनके लिए जो है काफ़ी संघर्ष होता है पहला ब्रेक मिलना। और दूसरी चीज़, अगर हम स्टारडम की बात करें सितारों की, तो आज भी अगर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की बात करें तो शनिवार या रविवार उनके घर के बाहर, जलसा के बाहर लोगों की भीड़ लगी होती है फैंस की, और अमिताभ बच्चन जब

0: पर होते हैं तो आते हैं, लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करते हैं और फैंस भी उन्हें देखकर जो है निहाल हो जाते हैं। तो आइए ये गीत सुनते हैं फिल्म सत्या से, आशा भोसले, सुरेश वाडकर और साथियों की आवाजों में।
1: क्या बात है।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नौ बजकर 16 मिनट हो गए हैं दोस्तों और आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर। मेरे साथ हैं इस वक्त आरजे अनूप। अनूप, अगर हम मुंबई की भाषा की बात करें या फिर जैसा कि यहाँ पर भाईगिरी की एक लैंग्वेज सुनने में आती थी, एक ज़माना था जब इस तरह की लैंग्वेज ज़्यादा बोले जाते थे। अभी आपने जो हमने अपने श्रोताओं को जो गीत सुनाया आपकी खातिर फिल्म का बप्पिलहरी और साथियों की आवाज़ों में, इसमें कहीं ना कहीं वो टच हमें देखने को मिला जैसे अपन बोला, इस तरह की जो लैंग्वेज होती है जैसा कि अपुन को, तुम को, काय को, रापचिक, शाना, इस तरह की जो लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पर, तो क्या कहेंगे मुंबई की भाषा में अपनी ही डिक्शनरी को लेकर चलती है। तो आजकल ये इस तरह की बोलियाँ जो है, जो हमारी नई जनरेशन है, जनजी जिसे कहा जाता है, वो थोड़ा सा इससे अलग थलग पड़ रही है क्या?
2: बिल्कुल रेहान, और कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है कि मुंबई की भाषा अपनी एक अलग डिक्शनरी, और ये हमने कई सौ फिल्मों में देखा हुआ है। भले ही वो फिल्मों में कोई टैक्सी ड्राइवर हो या कोई भाई हो, बिल्कुल अपून तुपून तुमको और आपचे के शाण्या, ये सब बोलना बहुत ही कॉमन हम सुनते थे मुंबई में। पर अभी जनजी ने थोड़ी सी अपनी लिंगो जो भाषा है वो बदल दी है डेफिनेटली। अब पहले अगर हम बात करें तो जैसे आज की डेट में जनजी जो है ब्रदर ब्रो कहते हैं, पर अब जो हम बड़े हुए हैं तो यहाँ पे कोई ऐसे ब्रदर ब्रो नहीं कहता था, यहाँ पे सब भाई या तो भाऊ कहते थे। लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि देखिए व्याकरण तो हर जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता ही रहेगा, पर जो मुंबई की भावना है ना वो तो सेम रहेगी सब लोगों में। और शुद्ध भावना जो होती है मुंबई की वो ये है कि भाई हम तुम साथ मिले, टुगेदर, अगर अपन साथ हैं तो मजेदार मुंबई रहेगी। और इसी मुंबईया स्टाइल में अगर हम बात करें तो चलिए अपने श्रोताओं को सुनाते हैं एक बढ़िया मुंबईया स्टाइल में गाना।
1: बिल्कुल, चलिए एंजॉय करिए इस ट्रैक को।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हो गए हैं सुबह के, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। सभी का स्वागत है एक बार फिर से, और मैं हूं आपके साथ आपका आरजे दोस्त, और हमारे साथ हैं आरजे अनूप। हम बात कर रहे हैं आज मुंबई और महाराष्ट्र की संस्कृति और त्योहारों की। तो अनूप, सिनेमा की जब भी बात होती है तो सिनेमा में महाराष्ट्र की लोक कलाएँ जैसे हैं लावणी है या फिर पोवाड़ा है या फिर इसकी मिट्टी की सुगंध हमें ज़रूर देखने को मिलती है। फिर पैरों में चाहे घुंघरू नवारी साड़ी हो या फिर नथ पहनकर जब कोई कलाकार मंच पर थिरकता है तो फिर वो नज़ारा देखते ही बनता है, और पूरा थिएटर या फिर सिनेमा हॉल जो है वो तालियों से गूंज उठता है। क्या कहेंगे आप इस तरह की संस्कृति जो हमारी महाराष्ट्र की है, या फिल्मों में जब वो साकार होती है तो
3: बिल्कुल देखिए। और मैंने तो महाराष्ट्र में काफ़ी देखा है कि एक कलाकार को इतनी इज्जत दी जाती है, इतना प्यार दिया जाता है कि जब कलाकार झूमता है एक स्टेज पर तो दर्शक भी उसके साथ झूमने लग जाते हैं। और रेहान, मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि कला और इन सब के अलावा महाराष्ट्र का इतिहास भी जो है वो वीरता और स्वाभिमान से
2: गौरवशाली है।
3: और जैसे अगर हम घूमे महाराष्ट्र में तो जैसे रायगढ़, सिंहगढ़, प्रतापगढ़, आज भी ये जो किले हैं और इसके अलावा अनेक किले, तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज और हमारे मराठा योद्धाओं की ऐसी गाथाएं सुनाते हैं जिसको हम सुन के बिल्कुल सीना चौड़ा करके गर्व महसूस करते हैं। और यहाँ की मिट्टी में रेहान एक शौर्य की खुशबू है, और जहाँ शौर्य है देखिए वहाँ पराक्रम है, और जहाँ पराक्रम और शौर्य आता है वहाँ जल्लोष होता है और वहाँ जलसा होता है।
2: बिल्कुल।
3: तो क्या लगता है आपको, एक शौर्य पराक्रम और जल्लोष वाला गाना सुना दे अपने श्रोताओं को?
2: बिल्कुल जरूर।
3: तो चलिए

0: तो अभी आपने बहुत ही खूबसूरत ये गीत सुना, और जब भी बात मुंबई या महाराष्ट्र की होती है, सिर्फ मुंबई की ही क्यों, महाराष्ट्र का कोना कोना बहुत ही खास है। कोल्हापुर की तीखी तावड़ा, पांडरा रप्पा और मिसल पाव हो, या फिर नागपुर के रसीले संतरे, पुणे की जो है बाकरवड़ी हो, या फिर महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी, या यूं ये कह सकते हैं कि हम पूरा महाराष्ट्र राज्य जो है एक थाली की तरह है अनूप, जिसमें हर स्वाद लाजवाब है।
1: आपने बोला रेहान और मेरे मुंह में पानी आ गया है अब। कहे तो देखिए, महाराष्ट्र आए कोई और वड़ा पाव ना खाए तो वो सपना थोड़ा सा अधूरा ही होता है। हम सबके काफी दोस्त हैं जो मुंबई आते हैं और कहते हैं कि भाई वड़ा पाव तो खाना ही खाना है, और वड़ा पाव के साथ होती है मिसल पाव, और महाराष्ट्र की जो पूरण पोड़ी है, आय हाय, मोदक गणपति में जो हम खाते हैं, और कोल्हापुरी खाना, मुंबई का स्ट्रीट फूड, हर स्वाद से छुपी एक अलग कहानी है। और मुंबई और महाराष्ट्र ऐसा है कि देखिए, करोड़पति हो या साधारण व्यक्ति, वो हर ये चीज़ जो है वो खाता है और बड़े चाव से खाता है, और उसकी जो है एक अंदर की जो आत्मा होती है ना, वो कह सकते हैं कि महाराष्ट्रियन खाने से तृप्त हो जाती है। तो अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं थोड़ा इंसा इंटरनेट पे कुछ तस्वीरें देख लेता हूँ, और आप कुछ एक गाना सुना दीजिए। तब
0: डॉन फिल्म का ये गीत मैं सुनवा रहा हूँ अपने श्रोताओं को, उम्मीद है ये प्रोग्राम वो काफ़ी पसंद कर रहे होंगे, और गाना भी जो हम प्ले करने जा रहे हैं उसे भी इंजॉय करेंगे।

हो राधे श्याम की, जय हो सिया राम की, और जय हो बंबई धाम की। ई है

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
2: जी हाँ, मैं हूँ आरजे अनूप। मेरे साथ हैं आरजे रेहान और आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई। आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र और मुंबई पे फोकस करते हुए। तो हमने बात कर ली खाने की और ऐतिहासिक धरोहरों की और त्योहारों की, तो एक और चीज़ हम कैसे भूल सकते हैं, वो है महाराष्ट्र में जो एक आस्था का संगम होता है। भले ही वो नासिक में आप आने वाले समय के कुंभ की बात करें या कोल्हापुर की माँ लक्ष्मी देवी का, तो एक तरफ प्रभा देवी में बप्पा का सिद्धि विनायक मंदिर है, तो देखिए दूसरी तरफ समंदर के बीचों बीच हाजी अली की दरगाह है। कितनी सुंदर बात है ना रेहान ये।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: और यही बात बताती है रेहान हमें कि मुंबई जो है, महाराष्ट्र जो है, किसी आस्था के या किसी मजहब का मोहताज नहीं है। हर कोई एक दूसरे की प्रार्थनाओं का सम्मान करता है, आदर करता है, और शायद यही एक खूबसूरती है जिसे
3: बिल्कुल,
2: हम
3: बिल्कुल
2: कहते भी हैं।
3: जी, यही इस शहर की असली खूबसूरती है। और यहाँ जो है पूरे देश के लोग यहाँ पर आते हैं, उनका भी संगम यहाँ पर देखने को मिलता
2: और
3: है।
2: और रेहान देखिए, इसीलिए हर जगह ये कहा जाता है कि मुंबई जैसी कॉस्मोपॉलिटन जगह
3: जी
2: कोई
3: जी,
2: नहीं शायद भारत।
3: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब ये गीत सुनते हैं जहाँ पर आस्था और
2: भक्ति
3: भक्ति दोनों का संगम देखने को मिलता है।

0: तो अनूप, 9:55 हो गए हैं और बहुत ही खूबसूरत गीत ये आस्था और भक्ति का संगम के रूप में हमने सुना और श्रोताओं ने ज़रूर इस गीत को पसंद किया होगा। तो पहला घंटा समापन की ओर है, क्या कहेंगे अनूप इस समापन को लेकर?
1: रेहान, देखिए जैसे सूरज को दिया दिखाने का एक मुहावरा है, वैसे ही हम महाराष्ट्र और मुंबई के बारे में जितनी बातें करें उतनी कम ही होंगी, क्योंकि ये जो जगह है ये हमारे दिलों में बसती है और इसके बारे में कितना बोले वो उतना कम ही होगा। पर एक चीज़ मैं जो छेड़ना चाहूँगा बात, वो ये है कि जैसे शाम होती है ना सुहानी शाम, तो मुंबई में जैसे मरीन ड्राइव हो गया, चौपाटी हो गया, जुहू ले लो, गिरगांव ले लो, वहाँ पर अपने परिवार दोस्तों के साथ बैठ कर पाव भाजी, काला खट्टा या कुछ भी खाने पीने का, या कुछ नहीं करते हुए सिर्फ बैठने का भी जो लुत्फ है ना, उसकी बराबरी कुछ नहीं हो सकती।
0: बिल्कुल बिल्कुल, 9:56 हो गए हैं दोस्तों और बने रहिए हमारे साथ। ठीक 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद भी FM रेनबो पर मनोरंजन का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यूं ही बने रहिए हमारे साथ।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: सुबह के 10 बज चुके हैं दोस्तों, और स्वागत है एक बार आपका फिर से। मैं हूं आपका आरजे दोस्त रेहान, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 MHz पर, म्यूजिकली योर्स। आगे बढ़ें इससे पहले एक नज़र प्रमुख समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ कल भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। यह बैठक सफल द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक और ठोस कदम साबित हुई। इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भाग लिया। महाराष्ट्र के पालघर जिले में कल एक ट्रक और एक कंटेनर के बीच हुई टक्कर में 13 लोगों की दुखद मौत हो गई और 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राज्य सरकार ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों के लिए 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। अब खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रधानाचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। अब खबर आईपीएल से। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। ये मुकाबला जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार।

0: स्वानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: तो दोस्तों 10:02 हो गए हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। मेरे साथ इस वक्त हैं आरजे अनूप और ये दूसरा सेगमेंट जो है 10 बजे से शुरू होता है, 10:02 से। और इस दूसरे सेगमेंट का नाम है अनूप नमस्ते भारत। और नमस्ते भारत में आज यानी कि मंगलवार को जो सेगमेंट होता है वो रहता है कि भारत हमको जान से प्यारा है। ये विषय ही, ये सेगमेंट ही क्या शो करता है, हमारे अंदर एक जज्बा भर देता है देशभक्ति का, जैसा कि इसमें टॉपिक है। और आज का जो टॉपिक है वो हम बताने से पहले अनूप इस गाने को सुनते हैं और उसके बाद जो है हम उस टॉपिक का जिक्र करेंगे और आगे इस शो को बढ़ाएंगे। फिलहाल श्रोताओं के लिए ये ट्रैक, ये नगमा बहुत ही खूबसूरत, अनूप एंजॉय करते हैं
2: जी।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत ये आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म रंगीला से अभी आपने सुना। और आज अगर हम बात करें आज के इस कार्यक्रम की जिसका नाम है भारत हमको जान से प्यारा है, और इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे चुनौती और सफलता की। दोस्तों, जीवन में चुनौतियां हर कदम पर आती हैं, कभी आर्थिक कठिनाई, कभी सामाजिक दबाव, कभी असफलता का डर, तो कभी परिस्थितियों की परीक्षा। लेकिन जो व्यक्ति इन चुनौतियों का सामना करता है वही सफलता की एक नई कहानी लिखता है, क्यों अनूप?
1: बिल्कुल सही कहा आपने रेहान। तो आज के इस एक घंटे के सफर में रेहान हम बात करेंगे संघर्ष की, मेहनत की, साहस की और उन मुश्किलों की जिसे हराकर सफलता हासिल की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस प्रेरणादायक सफर की इस शानदार गाने से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: ईकेवाईसी,
2: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
2: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मोस को

0: Alternative Bank, enriching life.
1: श्रोताओं, जीवन अगर एक यात्रा है तो चुनौतियां उस यात्रा का पड़ाव है। बिना संघर्ष के सफलता का आनंद अधूरा होता है, क्यों, है ना? देखिए, हम कहते हैं कि कुछ खटास हो तभी तो मीठे का आनंद हमें आएगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और रेहान, अगर पतझड़ ना हो तो बाहर का क्या ही मजा। वैसे ही अगर एक किसान के लिए मौसम चुनौती है, एक सैनिक के लिए सीमा पर डटे रहना और एक आम नागरिक के लिए ईमानदारी के साथ जीवन जीना भी किसी चुनौती से कम नहीं, और एक छात्र के लिए जैसे परीक्षा भी चुनौती है, तो बड़ी बात यह है कि ये चुनौती हमें जो है रेहान कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें अपनी ताकत पहचानने का मौका देती है।
2: बिल्कुल।
1: जब तक कोई बच्चा चलना सीखता है तो उसके पहले वो कई बार गिरता भी है ना, लेकिन हर बार उठकर फिर चलने की कोशिश करता
2: है। जी बिल्कुल अनूप, जीवन का यही सबसे बड़ा संदेश है कि गिरना गलत नहीं है, गिर कर रुक जाना गलत है। सफल वही होता है जो मुश्किलों से डरता नहीं बल्कि उनसे सीख कर आगे बढ़ता है।
1: बिल्कुल।
2: तो आइए कार्यक्रम के इस मोड़ पर आपको अब सुनवाते हैं सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में फिल्म सुल्तान का ये टाइटल ट्रैक।
1: क्या बात है।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: तो सुबह के 10:30 हो गए हैं दोस्तों, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मिस क्लियर्स एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन

0: सकते हैं। और कार्यक्रम मस्त मुंबई इस वक्त आप इंजॉय कर रहे हैं और भारत हमको जान से प्यारा है सेगमेंट में हम आज बात कर रहे हैं चुनौती और सफलता की। दोस्तों, अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो आज दुनिया भारत की उपलब्धियों को सलाम कर रही है, लेकिन इन सफलताओं के पीछे सालों का संघर्ष और अनेक चुनौतियां छिपी हुई हैं। कभी हमारा देश गरीबी, अशिक्षा और संसाधनों की कमी से जूझ रहा था, लेकिन आज परिस्थिति बिल्कुल उल्टी है। आज वही भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में देखें तो सीमित संसाधनों के बावजूद भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान, मंगलयान जैसे मिशन जो है वो सफल किए हैं, और यह न केवल विज्ञान की जीत है बल्कि चुनौतियों पर विजय पाने की कहानी है। अनूप,
1: बिल्कुल सही रेहान। कोविड महामारी के समय भी हमने देखा कि भारत ने दुनिया को दिखाया कि कठिन परिस्थितियों में एकजुट होकर कैसे मुकाबला किया जाता है। डॉक्टर, नर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी और आम नागरिक भी सभी ने मिलकर अपने इस प्यारे से भारत देश को संभाला था। आज भारत डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के जरिए नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। याद रखिए, हर सफलता जो बड़ी होती है उसके पीछे कई कई छोटी चुनौतियों को पार करने का साहस होता है। क्या कहते हैं आप?
0: बिल्कुल बिल्कुल अनूप। अब अपने श्रोताओं को ये गीत हम सुनवाते हैं और रेनबो पर मनोरंजन का जो सिलसिला है यूं ही जारी रहेगा।

0: हम बात कर रहे हैं देश और सफलता कैसे कठिन परिस्थितियों के बाद ही मिलती है। रेहान, आज हम जो हैं सबसे युवा देश हैं और आज हम बात करें तो युवा जो हैं भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: बिल्कुल।
0: और ये देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि युवा जो है अगर वो कोई बात ठान ले तो कोई भी उनके लिए चुनौती बड़ी नहीं रह जाती। आज हमारे जो युवा हैं वो शिक्षा, तकनीक, खेल, कला और व्यापार हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रहा है। लेकिन देखिए, कोई भी चीज़ चुनौती से भरी उससे कम नहीं होती। युवाओं के सामने भी कई चुनौतियां हैं। प्रतिस्पर्धा है, तनाव है, थोड़ी सी बेरोजगारी है, सोशल मीडिया का दबाव है और गलत दिशा में जाने का खतरा भी है।
1: जी जी।
0: ऐसे समय में ज़रूरी हो जाता है कि अपनी सोच को सकारात्मक बनाए और दृष्टिकोण भी सही रखे। अगर असफलता भी मिले तो निराश ना हो। अरे युवा हो भाई, बहुत आगे जिंदगी पड़ी है आपके सामने। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे युवाओं को। इस बात पर रेहान, मुझे एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की एक बात याद आ रही है, मैं आपसे जल्दी से साझा करूं।
1: बिल्कुल।
0: वो कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो हमें हम सोने के समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते।
1: जी बिल्कुल। जीवन में सफलता पाने के लिए कुछ बातों को हमेशा याद रखना चाहिए अनूप। नंबर एक, कि अपना लक्ष्य पहले तय करें और उसके बाद उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनुशासन अपनाएं और उसके बाद अपनी सोच को जो है वो सकारात्मक रखें। और असफलता मिलती भी है तो उसे घबराए नहीं, उससे सीख लेने की कोशिश करें। और आखिरी में जो है अपनी मेहनत पर जो है भरोसा रखें, क्योंकि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है।
0: बिल्कुल।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: दस बजकर 45 मिनट और आप इंजॉय कर रहे हैं नमस्ते भारत। आरजे रेहान और आपके साथ हैं आरजे अनूप। दोस्तों,

चुनौती सिर्फ आसमान की नहीं है, चुनौती हमारी सरहदों की भी है। मुश्किल तरीन मौसम, ऊंचे पहाड़ और दुश्मनों की चालें। लेकिन पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो भारत ने एक बड़ी चुनौती को सफलता में बदला है, और ये चुनौती थी हमारी सामरिक बुनियादी ढांचा। दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल अटल टनल से लेकर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं तक बनी सड़कें और ऑल वेदर कनेक्टिविटी ने ये सारी चिंताओं को दूर कर दिया है। ये सिर्फ कंक्रीट की सड़कें नहीं, बल्कि हमारे देश की सुरक्षा की वो अभेद कवच हैं जो हमारी सेना को पलक झपकते ही मोर्चे पर तैनात कर देती हैं। बुनियादी ढांचे की बात करें तो इस मजबूती ने हमारी सुरक्षा को एक नई परिभाषा दी है और एक नई दिशा भी दी है। तो चलिए इसी मजबूती और जोश को सलाम करते हैं इस गीत के साथ।

0: तो सुबह के 10:52 हो गए हैं दोस्तों, और अब आखिरी 8 मिनट बचे हुए हैं इस कार्यक्रम के, जिसका नाम है नमस्ते भारत। और आज का जो सेगमेंट है चुनौती और सफलता, और अनूप क्या कहेंगे इस क्लोजिंग पर इस प्रोग्राम की, चलते चलते कुछ नगमों के साथ हम छोड़ जाएंगे अपने श्रोताओं को। और हम यही कहेंगे कि आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल जो है, आप यूँ ही सुनते रहिए। क्या कहेंगे
1: रियान? मैं तो यही कहूँगा कि आज ऐसा लग रहा है कि वक्त जो है पंख लगाकर उड़ चला है, और देखते देखते ये जो एक घंटा था वो भी हमें हमारे से बीत चुका है, पर बहुत ही प्यारा वक्त बीता है और हमने काफ़ी अच्छी बातें भी की हैं। तो मुझे लगता है कि इसी के साथ अब एक प्यारा सा अलविदा भी कह देते हैं हमारे सारे श्रोताओं को। तो दोस्तों, मैं हूँ RJ अनूप, और अब मैं और RJ रेहान, मेरे साथ जो है मेरे दोस्त, वो आपसे विदा लेते हैं। आप यूं ही सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो 107.1 FM। याद रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए अपना, सदा मुस्कुराते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।
0: जी बिल्कुल, अपना ख्याल रखिए, और मुझे यानी कि RJ रेहान और अनूप को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: जी हाँ, म्यूजिकली योर्स FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पे मैं हूँ आरजी नमिता और पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। दिल्ली में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 98.64 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपये प्रति लीटर हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा है कि संघर्ष विराम के लिए गंभीर वार्ता हो रही है, जिसके कारण सैन्य हमलों को स्थगित कर दिया गया है। इसी के साथ समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। पेश है कार्यक्रम ब्रेक फ्री।

वेलकम, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आरजे नमिता, आपके साथ ब्रेक फ्री प्रोग्राम चल रहा है। और दोस्तों, आते वक्त जो है ना, बड़ी हड़बड़ी में मैं जो है सीलिंग से निकल रही थी और काफ़ी रश बना हुआ था, बहुत भीड़ थी और बड़ा मेरा जो अपना स्टूडियो में आने का टाइम है वो डिले होता जा रहा था। सो कुछ रॉन्ग टर्न्स लेने से ऐसा हो जाता है, हम थोड़ी देर से डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हमारे जो डिसीजंस होते हैं लाइफ के, उन पर करेंगे बात। कुछ खास बातें होंगी कि क्या गलत रास्ते हम चुन लेते हैं और क्यों हम यू टर्न नहीं ले पाते। बने रहिए हमारे साथ यहीं एफएम रेनबो पर। अगर आप भी कुछ ऐसा फील करते हैं कि हमने ये गलत किया था या ये डिसीजन या ये डायरेक्शन गलत था, तो यू टर्न ले लेना चाहिए था लेकिन वो भी नहीं लिया, तो आपको बताऊंगी ऐसा क्यों हुआ। बने रहिए एफएम रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ, मुकद्दर का सिकंदर बनना भी कोई आसान काम नहीं है। बहुत सारे गलत निर्णय से गुजरना पड़ता है और गलत निर्णय को सही साबित करना पड़ता है। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी ना कभी हम सब ने कोई फैसला ज़रूर लिया होता है जो उस वक्त बिल्कुल सही लगता है, लेकिन बाद में उसी फैसले ने हमारी ज़िंदगी की दिशा बदल दी। ऐसा भी होता है, किसी ने गलत इंसान पर भरोसा किया, किसी ने गुस्से में रिश्ते तोड़ दिए, किसी ने सपनों की जगह समझौता चुन लिया। लेकिन क्या हर गलत फैसला सिर्फ नुकसान देता है, या फिर वही फैसले हमें ज़िंदगी के बड़े बड़े सबक सिखाता है? क्या सोचते हैं आप, लिख भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8657661071 पर। फिलहाल गलत फैसले हमेशा गलत सोच से नहीं होते, कई बार वो फैसले जो है भावनाओं से लिए जाते हैं, जल्दबाजी में, गुस्से में, अकेलेपन में, या फिर किसी को खो देने के डर में। और फिर बाद में इंसान सोचता है कि काश उस दिन थोड़ा रुक जाता। दोस्तों, ज़िंदगी के सबसे कठिन फैसले अक्सर रिश्तों में लिए जाते हैं। कभी हम गलत लोगों को अपना बना लेते हैं और कभी सही लोगों को खो देते हैं। एक लड़की की कहानी बस इस गाने के उस पार सुनाऊंगी। गलती से गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, और ये मिस्टेक उस लड़की को कैसी भारी पड़ी वो बताती हूँ, लेकिन इस गाने के उस पार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: ईकेवाईसी,
2: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
2: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

एग्जैक्टली हर गलती के लिए कोई उम्र का मुंह देखने की ज़रूरत नहीं होती. कई बार जो है ना उम्र दराज लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं. फिलहाल एक कहानी की बात कर रहे थे, एक लड़की की बात हो रही थी जिससे गलतियां हुई और गलतियों की सज़ा भी मिली. लेकिन लेकिन जो लक्ष्य था वो कुछ और था. जी हाँ, ये लड़की थी आशा.

छोटी सी आशा जब थी तब से ही बहुत सारे निर्णय गलत लेती थी। अब निर्णय गलत होते थे या नहीं ये तो उसे ही मालूम है, लेकिन उस वक्त पे उसे वही सही लगता था। उसके गलत निर्णय से कई बार वो लाइफ में घूम फिर के एक ही मुकाम पर आकर खड़ी हो जाती थी। यही गलत निर्णय कब उसके लिए सही बन गए ये उसे भी पता नहीं लगा। उसने अपने सपनों को छोड़कर सिर्फ रिश्ते बचाने की कोशिश की और एक दिन ऐसा हुआ कि गलत निर्णय में भी उसका साथ देना छोड़ दिया और रिश्ते टूट गए। तब उसे समझा कि खुद को खोकर कोई रिश्ता नहीं बचता, कोई लक्ष्य नहीं बचता, तो खुद को बचाना ही सबसे अच्छा तरीका है। इस लड़की ने जब अपने करियर की शुरुआत की तो कई सारी गलतियां की, कई बार इस ओर जाती कभी इस ओर जाती, कोई फील्ड एक प्रॉपर पकड़ ही नहीं पाई। जब गलती हो गई तब आगे जाके जब उसे एक उम्र के बाद रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी करियर की गलती है और मैं इसे ठीक करने के लिए आज ये कदम उठाती हूँ, तो बैरियर बन गए उसके अपने लोग जो नहीं चाहते थे कि वो आगे बढ़े। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो उसका बुरा चाहते थे, बल्कि इसलिए कि उनकी सोच ऐसी थी कि घर में अगर हमारे कोई लड़की आई है तो वो हमारे घर को संभाले, ना कि अपने करियर पे ध्यान दे। फिर उस रिश्ते को बचाने के लिए गलत निर्णय, उस रिश्ते को बचाते बचाते कहीं ना कहीं खुद को खोती गई, अपना करियर, वो रिश्ता और वो सब प्यार करने वाले उस लड़की से दूर हो गए। आशा जब खुद को खो चुकी थी तब भी यही सोचती रही कि या तो मेरा करियर बनाने का डिसीज़न बहुत लेट हुआ इसलिए शायद रिश्ता टूट गया, या फिर मैंने गलत रिश्ते वाले ही ढूंढ लिए, उनको हाँ कर दिया इसीलिए ये रिश्ता जो है टूट गया। एक दिन ऐसा हुआ जब बात आगे बढ़ी और आशा ने जिस डायरेक्शन पे अपने करियर को रखने की कोशिश की उसमें वो सफलता हासिल कर ली जो उसे चाहिए थी। जानते हैं फिर क्या हुआ? सारे रिश्तेदार खुद ब खुद चले आए उसके पास और बड़े प्राउड के साथ कहने लगे कि ये तो हमारी बेटी है, हमारी बहू है, मेरी बीवी है। सो ऐसा भी कभी कभी होता है कि हमारे गलत निर्णय हमें फोर्स करते हैं कि हम कुछ सही करें। और फिर आशा ने निर्णय लिया कि जब मैं अपने असली मुकाम तक आ ही गई हूँ तो क्यों ना समाज का कुछ भला करूँ। तब एक NGO उन्होंने ओपन की आशा नाम से। सो ऐसे ही होता है, आपके उद्देश्य आपको नहीं पता होते। आप जीवन के लिए किस उद्देश्य में आए हैं, यहाँ क्या आपको करना है ये नहीं पता होता, और कई बार गलत निर्णय इसलिए लिए जाते हैं ताकि कुछ बेहतर हो सके, आप और निखर कर आ सके। तो हीरा बनना है ना तो तराशेगा तो है वक्त, बस अपने लक्ष्य पर बने रहिए, कुछ गलत नहीं कीजिए और किसी का बुरा मत कीजिए, है कि नहीं? फिलहाल अगर आपको भी ब्रेक की ज़रूरत है गलत निर्णय से तो ये गाना सुनते रहिए FM रेनबो पर।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ, म्यूजिकली और एफएम रेनबो 107.1, मैं हूँ नमिता आपके साथ, और आप सुन रहे हैं ब्रेक फ्री प्रोग्राम, जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं ज़िंदगी के कुछ गलत डिसीजंस पर. जी हाँ, गलती किससे नहीं हो जाती, और हर चीज़ का एक सही समय होता है निर्धारित. तो इस निर्धारित समय में हम वो काम करते हैं जो हमें करना चाहिए. सो मैं ये कोई ऐसी लॉस्ट वाली बात नहीं कर रही हूँ, ये बात मैं ऐसे कह रही हूँ कि अगर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार हमें बाद में एहसास ज़रूर हो जाता है कि निर्णय गलत था, लेकिन ये भी पता होता है कि निर्णय अगर कोई और लिया जाता तो लाइफ की जो चीज़ आज हमें हासिल है वो नहीं मिलती. तो अगर ज़िंदगी में कभी गलत रास्ता ना मिले या गलत रास्ता मिल भी जाए, तो इंसान सही रास्ते की कीमत जो है वो नहीं समझ पाता. हर गलती, हर दर्द, हर पछतावा हमें थोड़ा और समझदार बनाता है. ठोकरें खाकर भी संभलना पड़ता है. ज़िंदगी है साहब, यहाँ चलना पड़ता है.

एग्जैक्टली दोस्तों, आदमी मुसाफिर है। गलत डायरेक्शन में जाने के बाद सबसे मुश्किल काम होता ये है कि फिर से कैसे शुरुआत करें। लेकिन नई शुरुआत हमेशा संभव है। नई नौकरी, नया सपना, नई सोच, नई जिंदगी। जी हाँ, हर वक्त यू टर्न लिया जा सकता है। इस बात को हम कभी भी मार्क करके नहीं रखते और इसीलिए बहुत परेशान रहते हैं। तो यू टर्न लेने से बिल्कुल ना डरे। एज या फिर परिस्थिति कभी भी इसका बैरियर नहीं बनती है। बस एक हिम्मत की ज़रूरत होती है। हर गलती एक नया सबक देती है। ज़िंदगी यूं ही तजुर्बों की किताब नहीं बनती। अगर आप आज किसी पछतावे में जी रहे हैं तो याद रखिए, आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अपने फैसलों से डरिए मत, क्योंकि कभी कभी गलत रास्ते ही हमें सही मंजिल तक पहुंचा देते हैं।

रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पे, मैं हूं नमिता। पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जो एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। मुंबई में पेट्रोल 107 रुपये 59 पैसे और डीजल 94 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई विश्वविद्यालय शिक्षा वर्ष 2026-2027 के लिए आयोजित LLM कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की आज अंतिम तिथि है। विश्वविद्यालय ने कहा है कि आवेदन पत्र स्वीकार करने की अवधि रात 11 बजे तक बढ़ा दी गई है। कैलिफोर्निया की एक अदालत ने अरबपति एलन मस्क और ओपन AI के बीच चल रहे कानूनी विवाद में ओपन AI के पक्ष में फैसला सुनाया है। एलन मस्क और ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन में की इस अदालती लड़ाई में दुनिया भर में इस बहस को तेज कर दिया है कि AI तकनीक पर किसका नियंत्रण होना चाहिए और इसे किस रफ्तार से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और समाचारों के अंत में, उच्चतम न्यायालय ने आवारा कुत्तों के पुनर्वास और बांध्याकरण संबंधी 7 नवंबर 2025 के अपने आदेश में बदलाव करने और उसे वापस लेने के अनुरोध वाली सभी याचिकाएं और आवेदन आज खारिज किए। न्यायालय ने कहा है कि सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार में कुत्तों के हमलों से भयमुक्त होकर स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। इसी के साथ समाचार का ये अंक समाप्त होता है।

FM Rainbow 107.1, मैं हूँ आरजे नमिता, आप सुन रहे हैं म्यूज़िक कैफ़े। म्यूज़िक कैफ़े में आज वो गाने होंगे जो मिक्स है किसी चीज़ का, यानी कि कभी के पॉप, रैप, एफ्रो बीट्स और लैटिन म्यूज़िक का रंग हमारे देसी गानों में घुल गया है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले घंटे जो है आप इन देसी बीट्स को सुनेंगे ग्लोबल धड़कनों के साथ। जी हाँ, ऐसा ही होता है देसी दिल, है कि नहीं? और कहा जाए पंजाबी बीट्स, तो पूरी दुनिया को नचा रही है इस वक्त पंजाबी बीट्स। फिलहाल ये वाला गाना आ रहा है आप तक FM रेनबो पर, दिल से दिल तक।

दोस्तों, एक दौर था जब बॉलीवुड सिर्फ मेलोडी या ऑर्केस्ट्रा पर चलता था, लेकिन फिर आया पॉप, रैप और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का ज़माना और हिंदी गानों की दुनिया में ट्रेंड्स को अपना कर नया अंदाज बना लिया। अब बीट सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और ऐसे ही कुछ गाने जो देसी दिल और ग्लोबल धड़कनों के नाम लिख दिए गए हैं, बजते सुनाई देते हैं हर डिस्को में, हर पब में, हर क्लब में। आपने भी सुने होंगे, और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पंजाबी बीट्स जो हैं वो ज़्यादातर सुनाई दे रहा है। भांगड़ा अब सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, ये अब इंटरनेशनल पार्टी लैंग्वेज बन चुका है। सोचिए, ढोल की आवाज़ जो कभी खेतों में गूंजती थी, आज वही बीट्स न्यूयॉर्क और दुबई के क्लब्स में लोगों को झूमने पर मजबूर कर रही है। आप जानते हैं कि नहीं? फिलहाल ये गाना आपको झूमने पर मजबूर कर रहा है कि नहीं, बताइएगा हमें।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मो कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ, इस तरीके से जो है बहुत सारे पंजाबी वीट्स भी आज झूमने पर हमें मजबूर कर रहे हैं, और पंजाबी के साथ जो क्लब वाली मिक्सिंग है ना, ये कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में है। 2024 में रैप और हिप हॉप सिर्फ म्यूज़िक नहीं थे, ये जो है ना यूथ की आवाज़ बन चुके थे। बॉलीवुड ने भी इस ट्रेंड को खूब अपनाया। ज़माना बदला, अंदाज बदले, पर दिल की आवाज़ हमेशा संगीत बनकर निकली। अपना टाइम आएगा, जी हाँ, ये गाना आपने सुना ही है, और ये सभी गाने बताते हैं कि कैसे उन सभी बातों को या उन लिरिक्स को जो दिल से लिखे जाते हैं उनको पॉप में कैसे ढाला जा सकता है और कितना खूबसूरत बनाया जा सकता है। पुराने गानों की आत्मा और नए दौर के बीट्स, यही आज के रीमिक्स इरा का जादू। कभी कभी पुराने गाने हमें याद दिला देते हैं और नए रीमिक्स जो होते हैं उन्हीं यादों को नई जनरेशन तक पहुँचा देते हैं। आज बॉलीवुड के डांस ट्रैक्स में EDM, एफ्रोबीट्स और इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक का ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। अब म्यूज़िक की कोई सीमा नहीं है, हर बीट दुनिया को जोड़ रही है कि नहीं? आप क्या बोलते हैं? बिल्कुल, लिख भेजिए कहाँ, 8657661071 पर। सुन रहे हैं FM रेनबो, म्यूज़िक FM में, मैं हूँ आपके साथ नमित।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी हाँ, म्यूजिकली योर्स एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पे म्यूजिक कैफे आप सुन रहे हैं। मैं हूँ नमिता आपके साथ और बातें हो रही हैं उन बीट्स की जो ऑफ बीट्स हैं, जो लगते हैं कि कुछ डिफरेंट ही हमने सुन लिया है, कुछ नाचने पर रोमांचक सी एक अनुभूति वो दे देते हैं। ऐसे गाने आपको सुनवा रही हूँ और आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे गाने जो अपने अंदर विदेशी टच लिए रहते हैं, कभी भाषा के सेंस में, कभी म्यूजिक के सेंस में, कभी सूफी अंदाज में। सो ये वाला गाना आ रहा है आप तक म्यूजिक कैफे में, जिसमें अरबिक अंदाज में नई म्यूजिक डाली गई थी। जी हाँ, मर्डर फिल्म का गीत है, आप सभी को याद होगा, और इसके जो अरबिक बोल है ना, वो भी आपको ज़बानी याद हो गए होंगे, चाहे आपको अरबी फारसी आती हो या ना आती हो। तो गानों के थ्रू होता है संस्कृति का आदान प्रदान। बने रहिए यहीं एफएम रेनबो पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: FM रेनबो पर इस वक्त म्यूजिक कैफे चालू है और मैं हूं नमिता आपके साथ। हम बातें कर रहे हैं उन गानों की जो गाने किसी और ही टच को लिए हुए हैं और बहुत फेमस हो रहे हैं। सिर्फ हमें ही इंटरटेन नहीं करते हैं ये गाने, आउट ऑफ इंडिया भी काफ़ी फेमस है। यानी जो हमारे NRI दोस्त हैं वो भी अपनी पार्टीज़ में इसी तरीके के गाने बजाना पसंद करते हैं। इवन उन पर फॉरेनर्स जो होते हैं वो भी बहुत डांस करते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। जी हाँ, ये कुछ गाने ऐसे ही गाने हैं जो बाहर फेमस हैं और साथ ही कुछ ऐसे गुजराती गाने भी हमारे पास होते हैं जिनको लेकर जो है ना हम ही यहाँ नवरात्रि नहीं बनाते बल्कि आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे लोग नवरात्रि बनाते हैं।

जी हाँ, ढोल बज चुके हैं, नगाड़े बज चुके हैं, इवन मराठी भी बीच में आ गई, अरबिक भी बीच में आ गई, पॉप्स भी हो गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है, हमने कुछ सूफी नहीं सुना अब तक। आज जो है ना दोस्तों, भारत का संगीत सिर्फ भारत में ही नहीं है, पूरी दुनिया में सुना जा रहा है, चाहे बॉलीवुड हो, इंडी हो, पंजाबी हो, फ्यूजन हो, देसी म्यूजिक हो, अब ये सब इंटरनेशनल ट्रेंड बन चुके हैं। संगीत वो भाषा है जिसे दिल सुनता है और दुनिया समझती है। कीप लिसनिंग FM रेनबो 107.1 MHz।

तो दोस्तों, सूफी अंदाज हो या फिर किसी लैंग्वेज का ट्विस्ट हो, कोई पॉप हो, कोई भी गीत रिमिक्स में भी हो, मगर वो गाने जिनका जादू हमारे ऊपर चल जाता है, वो सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं रहता, वो कई बार बहुत आगे तक पहुंच जाता है। यानी कि हमारे दूर दराज के दोस्त भी हमें बताते हैं कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे यहाँ ये नया गाना आया है, वो कितना खूबसूरत है, हमारे यहाँ यहाँ सब लोग सुनते हैं। ऐसे वर्ड्स आपने भी सुने होंगे किसी अपने के मुंह से, जो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ये लैंग्वेजेस बोली भी नहीं जाती। फिलहाल इस संगीत के क्रम को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ेंगे आपकी पसंद की ओर, हिट एंड हॉट में। हमारा नंबर है 8657661071। आप लिख भेजिए अपनी पसंद के गाने जो हिट एंड हॉट में हम बजाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं समाचारों की ओर। समाचारों के उस पार होगा ये कार्यक्रम। आप सभी को रहता है जिसका इंतजार, हिट एंड हॉट। बने रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: जी हाँ, म्यूजिकली योर्स FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पे शुरू हो चुका है कार्यक्रम आपका पसंदीदा हिट एंड हॉट। और आप सभी जो लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनके नाम एक बार ले लेती हूँ। विजेंद्र गहलोत जी अकोला से, अभिजीत जी, दिलीप जी, शुभलक्ष्मी जी, राकेश जी, प्रमोद जी, संदीप जी, प्रकाश शिंदे जी, राजेंद्र जी, ये मुलुंड से हमारे साथ

जुड़े हैं अशोक जी, काजल जी, राम प्रजापति जी, पंकज जी, फिरोज जी, रजनीकांत जी, अजय साकरे जी इंदौर से, प्रदीप जी, अशोक पाटिल जी, बाबा जी दादर से, संदीप जी, धनंजय जी, शुभदा जी, विजय मोहबा जी, अनुज, अंजू जी अंधेरी ईस्ट से, साथ ही महेश जी, वैदही जी, प्रवीण जी, स्नेहा जी, श्रीधर जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, और हमें इतने सारे मैसेजेस आप भेजते हैं वो सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पहला गाना जो हिट एंड हॉट में मैंने लिया है, आपको बता दूं, राम प्रजापति जी की पसंद का लिया है, और आप सभी की पसंद बजाने की बिल्कुल कोशिश रहती है। एक छोटी सी गुजारिश है कि कुछ एक पजल ज़रूर पूछूंगी और उसके जवाब भी ज़रूर जल्दी जल्दी दीजिएगा। तो इस गाने के उस पर पूछने वाले हैं हम सवाल, बने रहिए हमारे साथ यहीं FM रेनबो पर।

वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं फैमिली रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज. और वक्त आ गया है आपसे कुछ पूछताछ करने का. पेन पेपर ले लिया है ना? फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं सुनाने वाली हूँ कहानी. कहानी सुनकर आपको बताना है कौन सी फिल्म की कहानी है. छोटी सी शॉर्ट स्टोरी आपको सुना रही हूँ. एक लड़का अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक अमीर बिजनेसमैन के घर में घुसता है. वो उसकी दोनों बेटियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि असली कहानी कुछ और ही थी. दोनों बेटियों में से एक का मर्डर भी हो जाता है. अब जल्दी से लिख भेजिए कौन सी मूवी है ये. और हिंट अगर आपको चाहिए हो तो एक गाने के पार आपका सही जवाब ना आने पर हिंट ज़रूर दूंगी. बने रहिए यहीं FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक. ये गाना आप सुन रहे हैं फिरोज जी की पसंद पर ब्लैकमेल फिल्म से.

ये गीत आप सुन रहे थे राकेश माथुर जी की पसंद पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, जो आपसे पूछा गया था, एक पहेली पूछी थी मैंने और उसका फट से जवाब आ गया, जिसके कारण मुझे हिंट देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। भाई इतने जवाब आए हैं कि मैं क्या बोलूँ, यानी इतना आसान सवाल था मेरा। खैर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये अगला सवाल जो है वो आसान है कि नहीं। फिलहाल बता दूं कि इन लोगों ने सही जवाब दिए थे और फटाफट दिए थे। राम प्रजापति जी ने सबसे पहले जवाब दिया था और उसके साथ ही साथ अशोक जी ने सिमिलरली फास्ट आंसर किया था। सो बहुत जल्दी जल्दी जवाब आए, राकेश माथुर जी ने, शुभदा जी ने, पंकज जी ने, मुकेश जी ने, प्रकाश शिंदे जी ने, काजल जी ने, संदीप जी ने, प्रमोद जी ने, विट्ठल जी, मीना जी, अशोक जी, विजेंद्र जी, निशा जी, प्रदीप जी, फिरोज जी, सभी ने सही जवाब दिए हैं। वैभव जी ने भी हमें सही जवाब दिया है। हसमुख जी का भी अभी अभी हमारे पास मैसेज आया है। तो सवाल क्या था? सवाल ये था कि एक लड़का अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक अमीर बिजनेसमैन के घर में घुसता है और उसकी दोनों बेटियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि असली कहानी कुछ और ही थी और इसी बीच एक जो बेटी होती है उसका मर्डर भी किया जाता है। तो ये मूवी का नाम था बाजीगर और सही जवाब देने वाले इतने सारे हमारे लिसनर्स। फिलहाल राम प्रजापति जी की पसंद का गाना हम सुन चुके हैं, अशोक जी की पसंद का गाना ज़रूर सुनेंगे। बढ़ते हैं आगे अगली पहेली की तरफ। जी हाँ, क्या पूछा जाए, क्यों ना अब कुछ डायलॉग्स खंगाले जाएं कि आपको

फिल्म के डायलॉग्स पता हैं या नहीं, सिर्फ मूवी देख लेते हैं। जल्दी से पता कीजिए कि ये किसने कहा है, कौन सी फिल्म में। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, कौन सी फिल्म का डायलॉग है, जल्दी से लिख भेजिए। कहाँ? 8657661071। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। जी हाँ, आपसे हो पाएगा क्या? जल्दी से लिखना, भेज दीजिए हमें FM रेनबो पर। मैं हूँ RJ नमिता आपके साथ।

म्यूजिकली योर्स एफएम रेनबो 107.1। मैं हूँ आरजे नमिता और आप क्या रहे हैं जवाब। बहुत सारे सवाल हमारे चल रहे थे हिट एंड हॉट प्रोग्राम में और हमारे सवाल का जवाब जो है ना वो तो भरमार में आता है, यानी हमारे लिसनर्स कितने ध्यान से हमें सुन रहे होते हैं और इतनी फास्ट फास्ट आंसर करते हैं। आई टेल यू, हमने पूछा था आपसे सवाल कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, ये जो डायलॉग है ईजीएस्ट डायलॉग है, मगर हमें तो फास्ट वाला देखना है कि कौन विनर है। तो विनर वो है जिसने जल्दी जज किया। सो गैंग्स ऑफ वासीपुर, ये जो है इसका सही जवाब है। ये डायलॉग जो है इस फिल्म से है। कई सारे लोगों ने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे पहले निशा रत्नागिरी से जो हमें लिख रही हैं उन्होंने सबसे पहले जवाब दिया है। सो बहुत बहुत बधाई निशा जी। आगे भी बढ़ते हैं, बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जिन्होंने सही जवाब दिया। उनके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि कुछ कठिन सा पूछिए, कुछ ऐसा जो हम बता ना पाए। जी हाँ, हमारी कोशिश रहती है, लेकिन हमारी एक और कोशिश रहती है कि उसमें सभी लोग शामिल हो जाएं, दिमाग की जद्दोजहद करें और कुछ खोज के ले आए। आपको बताना है ये डायलॉग कौन सी फिल्म से है। बताना है, मैं हर टेस्ट पास करके दिखाऊंगा, चाहे ये मेरा ब्लड टेस्ट ही क्यों ना हो। कौन सी फिल्म का डायलॉग है ये, कौन से एक्टर ने बोला है, जल्दी से लिख भेजिए। कहाँ, यहीं 8657661071 पर। आपकी पसंद के गाने आ रहे हैं आप तक।

इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं बिट्ठल जी, अहिल्या नगर से हमें लिख रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। जो हमने आपसे पूछा था कि मैं हर टेस्ट पास करके दिखाऊंगा चाहे वो मेरा ब्लड टेस्ट ही क्यों ना हो, ये कौन सी मूवी का डायलॉग है? तो इसका सही जवाब है खिलाड़ी 786। जी हाँ, इस फिल्म का ये डायलॉग है और सही जवाब जो है वो मेहर अरोरा जी ने दिया है, पंकज मोहेड़ जी ने दिया है, राकेश माथुर जी ने दिया है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आपने फटाफट से हमें जवाब दिया। इसके लिए आप सभी जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ। आखिरी नगमा जो है इस चंक का, इस सेगमेंट का आ रहा है आपके पास और ये आ रहा है मीना जी की पसंद पर। यहाँ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आप सबकी अगर फरमाइशें पूरी नहीं कर पाई हूँ इस शोज़ के दौरान तो आपसे क्षमा चाहती हूँ। अगले शो में ज़रूर आपकी ही पसंद लूँगी, इसकी जो है इसका वादा है। और जाते जाते आपसे यही कहूँगी कि किसी भी परेशानी, किसी भी दिक्कत में आने के बाद यू टर्न लेने से कभी भी ना घबराएं। बने रहिए यहीं FM रेनबो के साथ। इसी गाने के साथ छोड़ जा रही हूँ आपको। टाटा बाय बाय, नमस्कार।

0: 8 degree Celsius and 43.5 degree Celsius was recorded at Palam station. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
1: In Uttar Pradesh, orange alert for heat wave to severe heat wave conditions has been issued again for the coming week. Banda continued as the hottest place in the country on the second consecutive day with a temperature of more than 47 degrees Celsius. Chief Minister Yogi Adityanath directed district magistrates, the health department, power department and relief agencies to remain on alert mode. More from our correspondent.
2: Apart from Banda, which recorded a staggering 47.6 degrees yesterday, several districts across the state are experiencing severe heat wave conditions with maximum temperatures hovering near or crossing the 45 degree mark. The Indian Meteorological Department has issued a heat wave alert for 33 districts and advised people to remain cautious, especially during afternoon hours. Heat wave conditions will prevail in the southern and central parts of the state for the next 1 week, while whole state will have hot nights for the next 2 days. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
1: IMD has also forecast heat wave to severe heat wave conditions in Madhya Pradesh today. Heat wave conditions are likely to prevail over Bihar and Marathwada during the day and over Punjab, Haryana, Chandigarh for the next 5 days. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.2% up in afternoon trade today. The Sensex rose by 136 points to 75,451, while the Nifty added 42 points to 23,692 when reports last came in. Meanwhile, the broader market on the National Stock Exchange outperformed the frontline indices. In IPL cricket today, Rajasthan Royals will take on Lucknow Super Giants in Jaipur at 7:30 p.m. Last night, Sunrisers Hyderabad confirmed its place in the playoff, defeating Chennai Super Kings by 5 wickets at M.H. Chidambaram Stadium. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to attend 3rd India-Nordic Summit in Oslo, aimed at strengthening cooperation in technology, renewable energy, defence and trade. Prime Minister Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, in a joint newspaper article, stress on partnerships in times of global uncertainty. Supreme Court refuses to recall its earlier order of keeping sterilized or vaccinated stray dogs in shelters. IMD issues yellow alert for heat wave in national capital for next 3 days. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Lucknow Super Giants in Jaipur this evening. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टोन म्योल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
4: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
3: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
5: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
3: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वें वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
7: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
3: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
8: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इंफॉर्मेशन कंट्रोल।
9: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
8: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
3: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
5: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री

0: सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहाँ हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: गरम चाय, गरम चाय,
1: गरम बांगड़े, गरम बांगड़े।

पण झालं काय माहितीये, गेला रडत रडत स्वतःच ढसा ढसा

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई एफएम रेनबो। शाम के ठीक 5:02 का समय है और ये समय है कार्यक्रम लव यू जिंदगी का। और आज शाम मैं शुभांगी हूँ आपके साथ।

मजरू जी ने इस गाने में जो लिखा था ना, हमने भी रख दी है कल पे कल की बातें, जीवन का हासिल है पल दो पल की बातें, दो ही घड़ी तो साथ रहेगा, करना क्या है तन्हा जी के क्या बात है। लव यू जिंदगी का ये एक घंटा जिंदगी के लिए समय देने का, अपने आप के लिए सोचने का, है ना।

सुनरैप लव यू जिंदगी 107.1 आकाशवाणी मुंबई एफएम रेनबो पर। उमर खयाम कह गए हैं, इस लम्हे में खुश रहिए, इस लम्हे में खुश रहिए, ये लम्हा ही जिंदगी है। क्या बात है। और हम सब क्या करते हैं ना, उसके पीछे समय बिताते रहते हैं, जो खो गया है, जो पीछे छूट गया है, जो बीत चुका है। खो गया तो क्यों खोया, ये सोचते सोचते इस वक्त जो मिल रहा है ना, उस पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। होता है ना आपके साथ भी ऐसा? होता है ना, अक्सर होता है। और ये खास तौर से तब होता है जब हमें अगर अच्छी सी जगह मिली है बैठने के लिए, ट्रेन में खड़े खड़े नहीं जाना है हमें, तो बस कुछ ना कुछ यही दिमाग में चलता रहता है। होता है ना आपके साथ भी ऐसा? हाँ, तो नहीं होना चाहिए। तो क्या करना है, सुनना है एफएम रेनबो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

क्यों एनर्जी भर गई ना बिल्कुल गाने सुनते हुए। हाँ बस यही तो है, इसीलिए आपको सुनना है एफएम रेनबो। इस वक्त लव यू जिंदगी सुन रहे हैं आप। छोटी छोटी चीजें ही ना बाद में बड़ी लगती है। वैसे देखो तो पक्षियों का कलरव हो, गैलरी में खिले फूल की महक हो, उस पर मंडराती तितली, ये सब कितना सुहाना है। लेकिन जब ये नहीं मिलता तो मिस करते हैं हम, तब हमें याद आता है कि अरे ये मुझे नहीं मिल रहा, ये चीज़ मैं मिस कर रही हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमेशा मिलती रहती है और फिर बाद में नहीं मिलती है कुछ समय के लिए, तो ऐसा लगता है रोज़ की भाग दौड़ में कभी वक्त मिले तो सुबह कैसे होती है, प्रकृति में क्या क्या नज़ारे देखने मिलते हैं, ये एक प्रसन्नता से भरा अनुभव होता है कि नहीं। लेकिन उसके लिए होना ये चाहिए बस कि थोड़ा सा समय हमें मिलना चाहिए, निकालना चाहिए, जैसे आप निकालते हो समय एफएम रेनबो सुनने के लिए।

और हम सबका सहारा है ये म्यूजिक। अगर म्यूजिक नहीं होता तो जरा सोचिए। नहीं, सोचना भी नहीं अच्छा लगता है, इतनी ज़्यादा अहमियत है म्यूज़िक की हमारे ज़िंदगी में, है कि नहीं। सुन रहे हैं आप लव यू ज़िंदगी 107.1 आकाशवाणी मुंबई एफ एम रेनबो पर। कभी यूँ होता है ना कि किसी छोटी प्रॉब्लम के लिए हम इतना ज़्यादा सोचते हैं, प्रॉब्लम तो बस छोटी होती है लेकिन इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा, और जैसे जैसे समय बीतता है ना फिर कभी हमें याद आता है और लगता है कि अरे ये तो इतनी सी बात थी, फिर इतना क्यों दिल को लगा लिया मैंने। ये तो मज़ा है ज़िंदगी का।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
2: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
1: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
2: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
1: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
2: म्यूजिकली योर्स।

ओह क्या गाना बनाया आरडी बर्मन ने. आरडी बर्मन आनंद बख्शी 1981 की फिल्म रॉकी का ये गाना आप सुन रहे थे किशोर दौर लता जी की आवाज़ में. और ऐसे ही रोमांटिक गाने वो भी इस वक्त शाम के वक्त. आह क्या बात है. दिल कहता है अपने आप ही लव यू जिंदगी जो आप सुन रहे हैं 107.1 आकाशवाणी मुंबई FM रेनबो पर म्यूजिकली योर्स.

ऐसे गाने याद है ना आपको भी, शायद ऐसा होता होगा कि जब ये फिल्में आई, ये गाने जब आए और हम कहीं से आ रहे हो, स्कूल से आ रहे हो खासतौर से, कहीं किसी घर के रेडियो से अगर ये ऐसे गाने सुनाई दे तो रुक कर पहले वो गाने

गाना सुना उसके बाद आगे बढ़े। ऐसा कुछ होता था कि अरे घर लौटते लौटते किसी के घर से कुछ ऐसे गाने सुनने मिले और बस दिल खुश हो गया। जो भी हुआ वो स्कूल में बस उसको छोड़ो, ये गाने लेकर गुनगुनाते हुए हम घर पर लौटते थे। कुछ ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ होगा? यही तो यादें सुहानी होती है और फिर दिल कहता है कि लव यू जिंदगी।

ठीक 6 बजे का समय है और 6:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। फिलहाल लव यू जिंदगी को समेटते हुए ये आखिरी गीत आपकी नजर करती जा रही हूँ। ठीक 6:15 पर दोबारा लौट कर आऊंगी कार्यक्रम अंदाज़े वया में। तो बस आपको सुनते रहना है, हमारे साथ रहना है 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours।
1: शाम के ठीक 6:15 का समय है। कार्यक्रम अंदाज़े बयां में शुभांगी आज आपके साथ, और आज कुछ वो गाने जो या तो सीधे दिल के बात कह देते हैं या फिर किसी बहादी बेहद रोमांटिक अंदाज में, बिल्कुल पोएटिक अंदाज में बयां करते हैं। कहीं ऐसा भी हो रहा है कि कोई किसी को प्रपोज कर रहा है, कोई इजहार कर रहा है। ये है आज अंदाजे बयां में जो भी मैं सुनवाने वाली हूँ। तो आपको करना बस ये है कि गौर से सुनना है। अंदाजे बयां है भैया, तो क्या कहा गया है गानों में, ये तो सुनना ही है।

सुन रहे हैं आप अंदाज बयां, और इसके बाद का जो गीत मैंने चुना है उसे तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आप काफ़ी लंबे समय बाद इस गीत को सुन रहे हो, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। लेकिन जब जब ये गीत मैं सुनती हूँ, सुनवाती हूँ, जब ये गीत मुझे याद आता है तो अक्सर मुझे ताज्जुब होता है कि जो कुछ कहना है वो कहते वक्त क्या क्या होता है, वो सब कैसे पकड़ा है इस गीत में। फिर वो बोल हो, धुन हो, गायकी हो, सब कुछ ऐसा बना है ना इस गीत में कि हर बार उतनी ही हैरत में पड़ जाती हूँ कि कैसे बनाया होगा ये गाना।

आज मुझे कुछ कहना है इसे लेकर, छोड़ो अब क्या कहना है तक का ये सफर जो इस गीत का, ओ हो। जब वो कहती है कि जो है मेरे ख्वाबों की मंजिल, उस मंजिल की बात ना हो, फिर उसे लगता है कि ये जो ज़रा सा साथ मिला है, ये साथ ना खो बैठूँ तो मैं कैसे बोलूँ। और फिर वो दोनों वहाँ तक आते हैं कि दिल ने दिल की बात समझ ली, अब मुँह से क्या कहना है, अब तो साथ ही रहना है, छोड़ो अब क्या कहना है। क्या बात है साहिर जी, हेमंत कुमार का संगीत, किशोर दा और सुधा मल्होत्रा की आवाज़ में आपने गर्लफ्रेंड की, गर्लफ्रेंड नाम की ये मूवी, इसमें से गाना आपने सुना, बेहद रोमांटिक, बेहद, और इससे बढ़कर कोई गाना इस सिचुएशन के लिए जो कहा गया है इस गीत में, इसके लिए इससे बढ़कर गाना मिलता ही नहीं है। इतना मतलब लाजवाब है, जो भी आप इस गीत की तारीफ में कहें वो कम ही लगता है। सुन रहे हैं आप अंदाज़ बयां, और आज अंदाज़ बयां में अंदाज़ कुछ बहुत ज़्यादा रोमांटिक गानों का, कैसे दिल की बात कही जाती है। इसके बाद राजेंद्र कृष्ण ने लिखा हुआ है गाना पड़ोसिन के लिए, लता जी की आवाज़, संगीतकार आर अडी बर्मन।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: क्या कहा?

रामपुर का लक्ष्मण से ये ड्यूएट आप सुन रहे थे, मजरू जी का लिखा हुआ। भाई ये अंदाज़े बयां है, बयां करने के लिए किसकी कलम उठी है तो ये तो बताना जरूरी है कि किसने लिखा है। सुन रहे हैं आप FM रेनबो 107.1 म्यूजिकल यर्स, शुभांगी आज आपके साथ अंदाज़े बयां सुन रहे हैं आप। और आज कुछ ऐसे रोमांटिक गाने लेकर आई हूँ जो कुछ कहना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। कभी नायक तो कभी नायिका कह रही है, कभी दोनों कह रहे हैं। और ये कमाल है गीतकारों की कलम का। इसके बाद गाइड का गाना है, शैलेंद्र जी की कलम जो लिखती है, जो विश्वास जताना जरूरी है कि बोलने वाले का भी विश्वास कैसे हो। तो ये जो राजू गाइड का अंदाज है, उसे यकीन दिलाने का, लाख मना ले दुनिया साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा, ये विश्वास दिलाने के लिए शैलेंद्र जी की ही कलम चाहिए, रफ़ी साहब की ही आवाज़ चाहिए। और जिस तरह से उसको बनाया है ना, वो एक पूरा गाना जहाँ से शुरू होता है, पूरा पूरा गाना एक विश्वास जगाता है सुनते हुए। बरमदा का कमाल हो जाए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुन रहे आप अंदाज़ बयां, और इस ब्रेक से पहले जो गीत आपने सुना वो नीरज जी का अंदाज़ बयां था। हम तेरे मेरे सपने के लिए इस जीवन के संगीत में लता जी की आवाज में आपने सुना। क्या लिखा है, प्रीत क्या जुड़ी डोर क्या बंधी, बिना जतन बिना यतन हो गई मैं नई। ओहो, प्रीत का रंग चढ़ने के बाद जो जो हुआ है, ओहो कितना खूबसूरती से लिखा है। इसके बाद पड़ोसन का गाना चुना है मैंने। पड़ोसन के इस गीत में राजेंद्र कृष्ण कहते, देखिए अभी पड़ोसन का एक गाना मैं सुनवा चुकी हूँ लता जी की आवाज में, है ना, कुछ समय पहले। अभी ये किशोरदा के लिए लिखा गाना है जिसमें राजेंद्र कृष्ण कहते हैं, कहना है हाँ मुझे कहना है आज तुमसे ये पहली बार। और फिर जो गाना आगे आगे बढ़ता है, ओहो यही है अंदाज़ बयां।

अब इसके बाद का जो गाना मैंने चुना है उसमें आनंद बख्शी देखिए क्या लिखते हैं, ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई, लेकिन ये बात तुम किसी से ना कहना, ये उसका कहना है हीरो का, जो फिल्म महल के लिए किशोर द्वारा आशु जी की आवाज़ में कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

और अब बस आखिरी गाना अंदाज बयां में, दिल की बात कहने का, इजहार करने का बड़ा लुभावना अंदाज है और ये ताकत बोलों की है। एक ही बात देखी ना इतने सारे गानों में, लेकिन अलग अलग तरीके से कही गई है और यही तो कहलाता है अंदाज बयां, बयां करने का अंदाज। अब इसके बाद, तुमने कदम जो रखा जमीन पर, सीने में क्यों झनकार हुई, ये सवाल बड़ा ही रोमांटिक सवाल।

सवाल लाई हूँ जिसका जवाब आपको भेजना है हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। आपकी ऐसी कोई हॉबी जो पीछे छूट गई है, किसी कारण ब्रेक आ गया है या ब्रेक लेना पड़ा, जो भी हुआ लेकिन वो रुक गया है और उसे आप फिर से शुरू करना चाहते हो, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी हॉबी रही है आपकी? हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071, 8657661071। सुन रहे आप कार्यक्रम हम तुम।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: शाम के ठीक 7:10 का समय है और सुन रहे हैं आप FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स। शुभांगी आज आपके साथ और ये आखिरी घंटा जो होता है वो आपके लिए बड़ा ही खास होता है, क्योंकि इसमें आपको शामिल होकर कुछ ना कुछ हमें बताना होता है। वो क्या आज आपके लिए

0: C-A-T कैट, कैट माने बिल्ली, R-A-T रैट, रैट माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?
1: M-A-D मैड, मैड माने पागल, B-O-Y बॉय, बॉय माने लड़का, अरे मतलब इसका तुमको हो तो क्या हुआ?
0: C-A-T कैट, कैट माने बिल्ली, R-A-T रैट, रैट माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?
1: M-A-D मैड, मैड माने

GOAT goat, goat माने बकरी, LION lion, lion माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ।

आप सुन रहे कार्यक्रम हम तुम 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई फिल्म ब्रेन मोर म्यूजिकली योर्स। और मैंने जो आपको सवाल पूछा है उसके जवाब इतने सारे आ रहे हैं ओ ओ ओ लेकिन मैं बताती जाऊंगी। बिल्कुल, राकेश मथुर कहते हैं कि उन्हें कॉइन कलेक्शन की हॉबी थी जो छूट गई है पीछे, और वो फिर से उसे शुरू करना तो चाहते हैं लेकिन आजकल ये जो कॉइन्स हैं वो बहुत कम इस्तेमाल की जाती है, तो वो अभी सोच रहे हैं कि ये फिर से शुरू करें। बिल्कुल कीजिएगा। संजय दर्शन कहते हैं कि उन्हें गाने की और लिखने की हॉबी थी। ओ, आप गाते भी हैं तो अरे गाना तो आप कभी भी गा सकते हैं, बिल्कुल गा सकते हैं। हॉबी है तो क्या आप घर पर बैठकर नहीं गा सकते हैं कि यूं ही अपनी खुशी के लिए अपने परिवार वालों के साथ बैठकर बस गप्पे लड़ाते हुए गाइए कभी। और लिखने की हॉबी तो बड़ी अच्छी हॉबी है, इससे क्या होता है ना कि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो पूरी पूरी बाहर निकल कर आती है। जो भी आप कहना चाहते हो वो आप अगर कलम से उतारोगे कागज़ पर तो बात ही और है। बिल्कुल, और फिर से वो शुरू करना भी चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट विशेस संजय जी, जारी रखिएगा। बिल्कुल, अरविंद कुलकर्णी और पंकज मोहोड़ इन दोनों को पढ़ने का शौक था, मत कहिए पढ़ना तो जारी रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, लेकिन काम के कारण नहीं होता है। हाँ, ये तो हुआ है आजकल सभी के साथ, और इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा ताकि आप फिर से उसे शुरू कर सकने की एटलीस्ट सोच तो सकते हैं और फिर कभी ना कभी आप शुरू भी कर पाओगे। और पंकज मोहोड़ जी ये भी लिखते हैं कि वो खत भी लिखते थे। क्या बात है, खतों की बात कही है आपने, किसी दिन खतों के लिए हम ज़रूर बात करेंगे हम तुम इस प्रोग्राम में ही। बड़ी अच्छी बात है ये खतों की, कितनी सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी आप सभी की। खत लिखना तो बिल्कुल छूट गया है, पीछे सभी का छूट गया है, लेकिन किसी न किसी बहाने हम कुछ ना कुछ लिखते तो हैं, मैसेज तो करते ही हैं, एटलीस्ट जैसे आप यहाँ हमें कर रहे हो। मैं आपको दोबारा अपना व्हाट्सएप नंबर एफएम रेनबो का बता दूं, 8657661071, 8657661071। आपको लिख कर भेजना है आपकी ऐसी कौन सी हॉबी है या थी जो पीछे छूट गई है और आप उसे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आप उसे फिर से शुरू करना चाहते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
2: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
1: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
2: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
1: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
2: म्यूजिकली योर्स।

7:34 हो चुके हैं, आपके जो जवाब आ रहे हैं, बारिश हो रही है जवाबों की। मैंने आपसे पूछा है कि आपकी ऐसी कोई हॉबी जो पीछे छूट गई है और आप उसे दोबारा शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसी कोई हॉबी जो आपकी है, अभी भी है, उसको फिर से थोड़ा सा एक पुश करने की ज़रूरत है। हॉबी जो है हमें जीना सिखा देती है, जैसे ऐसे रंग भर देती है, उससे कुछ अलग ही हमारा जो नज़रिया होता है ना वो बन जाता है और हम बहुत ज़्यादा सकारात्मक सोच रखते हैं और कुछ ना कुछ हम नया करते हैं ना, इस बात की बड़ी खुशी होती है। इसीलिए वो जो आपकी हॉबी है उसे ज़िंदा रखना बड़ा ज़रूरी है। आपको लिखकर भेजना है आपकी ऐसी कौन सी हॉबी जो पीछे छूट गई और आप उसे दोबारा शुरू करना चाहते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071, 8657661071। और हमें जवाब जिन्होंने भेजे हैं ज़रा बता दूँ आपको, विजेंद्र घाटोल, आई थिंक आपका सरनेम जो है घाटोल है विजेंद्र जी, राइट? सो इन्हें ड्राइविंग की हॉबी है, थी भी है, भी जारी है, बिल्कुल जारी है। अच्छा है ना, ड्राइविंग करते हो आप तो कहीं भी जा सकते हो, आप जिन्हें ड्राइविंग आती है ना वो कहीं भी जा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है और सबको साथ में ले भी जा सकते हैं। और जिन्हें नहीं आता ना ड्राइविंग, उनको बस इंतज़ार में रहना पड़ता है कि कोई अगर ड्राइविंग के लिए मिल जाए तो हम जा सकते हैं, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो चलो गाड़ी निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पास में तो जाना है, ये तो करना है, तो ऐसा बहुत लगता है कि अरे मुझे क्यों नहीं आते। प्रदीप अनंत कृष्णन कहते हैं कि वो आर्टिकल्स लिखते थे और 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स उन्होंने लिखे भी हैं, ओहो, और लोगों ने पढ़े भी हैं, वेरी गुड। प्रणव शिंदे जी कहते हैं इनकी हॉबी कुछ अलग ही है। प्रणव जी कहते हैं कि फिल्म रिलीज़ की जो एनिवर्सरी होती ना वो लिखना उन्हें पसंद है। क्या बात है, आप बिल्कुल फिल्मों के दीवाने हो, म्यूज़िक के दीवाने हो प्रणव जी, है ना। और इतना ही नहीं, वो लिखकर फिल्म रिलीज़ की एनिवर्सरी लिखकर रेनबो को वो यहाँ भेजने की उनकी जो हॉबी है, बिल्कुल। थैंक यू प्रणव जी, आप जैसे श्रोता जो हैं वो हमारा और ज़्यादा हौसला बढ़ाते हैं, हम आपके लिए कुछ नई नई टॉपिक्स लेकर आते हैं, इसके पीछे आप ही लोगों हमारी प्रेरणा हो। तो चलिए, हम तुम में आज मैंने आपको पूछा है कि आपकी ऐसी कौन सी हॉबी है जो पीछे छूट गई है और आप उसे दोबारा शुरू करना चाहते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8657661071।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
2: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
1: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
2: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
1: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल,
2: म्यूजिकली योर्स।
3: दिल से सुनती आए दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां।
4: सुन रहे आप कार्यक्रम हम तुम, और आपकी ऐसी कौन सी हॉबी जो आप फिर से शुरू करना चाहते हैं जो रुक गई है किसी कारण, तो ये मैंने आपसे पूछा है। और श्रीधरन बालचंद्रन कहते हैं कि उन्हें एक बुक पब्लिश करना था लेकिन ये हो नहीं सका, फंड्स की कमी की वजह से ये हो नहीं पाया। लेकिन श्रीधरन जी, आपको हम सबकी शुभकामनाएं और आप जल्द ही आपकी ये जो इच्छा है वो पूरी कर सकें। इसके बाद फिरोज सिंगनपुरिया कहते कि मोटरसाइकिल चलाने का शौक था और जब जाते थे अपने दोस्तों के साथ तो रेस भी लगाते थे कभी कभी। ये क्या बात है फिरोज जी। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बात देखी, एक हादसा देखा जिससे फिर उन्होंने मोटरसाइकिल चलाना छोड़ दिया है। पंकज मोहोड़ ने जो कहा कि अभी कुछ समय पहले, पंकज जी मैंने कहा आपका कौन सा शौक या कौन सी हॉबी आपकी, तो आपने फिर से ये लिखकर भेजा है कि आपने दो में से एक हॉबी जो आपकी थी वो फिर से शुरू कर दिया, खत लिखना आपने शुरू कर दिया है। वेरी गुड पंकज जी। आजकल के ज़माने में हम तो एक मैसेज करने के लिए भी अगर जितना हो सके उतना हम शॉर्ट में लिखने की कोशिश में होते हैं, वहाँ आप आज खत लिखना फिर से शुरू कर रहे हो, कर चुकी हो, तो इसके लिए आपको मैं कहूँगी कि बड़ी अच्छी बात की है आपने। और ये ख़तों का सिलसिला फिर से शुरू होगा क्या, क्या लगता है आपको? सुन रहे हैं हम तुम 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई एफएम रेनबो। और इसके बाद एक गाना तो बनता ही है। आप अभी भी कुछ समय है हमारे हाथों में, तो आप भेज सकते हैं कि आपकी ऐसी कौन सी हॉबी है जो पीछे छूट गई है और आप उसे दोबारा शुरू करना चाहते हैं। 8657661071 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज आप भेज सकते हैं।

7:53 का वक्त है और इजाजत लेने का वक्त बहुत करीब आ चुका है। उससे पहले जरा बता दूं कि जो जो श्रोता शामिल हुए, किशोर नाइक, हसमुख जी, प्रसन्न चक्रवर्ती, शंकराचार्य फ्रॉम तेलंगाना, शुभदा, डॉक्टर अंजू, राजेंद्र परमार, अशोक पाटिल, आरती, ज्योति घाटोल, अजय साखरे, ऐसे बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं हमसे जुड़े हुए थे। और शुभांगी अब चाहेगी आपसे इजाजत, दोबारा जरूर मिलूंगी सोमवार को इसी कार्यक्रम में। अब से कुछ देर में आप कीशा के साथ सुनेंगे ठीक 8 बजे कार्यक्रम रॉक विद जॉग। शुभांगी चाहेगी आपसे इजाजत, नमस्कार।

0: Well, you've got Adele there making sure that not only the powerful voice, but is something that she's sharing with all of us with Skyfall, but she's somebody who's also gone on to pretty much, you know, she looks completely different from the way she started. Now she's got this swelled figure and much more sculpted face, and I wonder what the entire world's going to, because she already had this phenomenally powerful voice, and even when she kind of lost her voice for a bit and made this amazing comeback. And but the way the world is, we look at just one particular way, one particular style of looking good. But Adele, we want to just share all our love with the amazing musician, confident, powerful musician that she is.
1: Definitely. And you know what I really appreciate about Adele? When someone asked her that, so what do you think about TikTok songs? Would you make songs for TikTok? And she was like, TikTok? I don't know what that is. I don't want to make songs for TikTok. Then who will make songs for my generation? I'm going to make sad songs. I'm going to make songs about divorce.
0: This is 107.1 megahertz FM Rainbow. We've got the news coming to you at 8:45 in Hindi, followed by the news at 9 o'clock in English. We're going to see you back here at 9:15.
2: भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
3: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
2: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा

0: कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सर राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सर राजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2000

0: 26 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
1: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
2: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
0: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश यानी मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecasts heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
4: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

महफिल सजी थी, लोग भी थे, बातें भी थी, फिर भी कहीं अधूरापन सा था। शायद कुछ रिश्ते आवाज से नहीं बस एहसास से पूरे होते हैं। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम रंगे महफिल लेकर आपके साथ हूं मैं, आपका दोस्त वीर दमन सिंह। एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।

रंगे महफिल में हर कोई मुस्कुराता मिला, कोई अपनी जीत पर कोई हालात छुपाता मिला। अजीब दौर है दोस्तों, चेहरे के पीछे हर शख्स थोड़ा कुछ ना कुछ छुपाता मिला।

जिंदगी एक एहसास है, जिंदगी तो तेरे पास है, जो मिल गया वही अपना है, जो नहीं मिला वो सपना है। मत गिनो जिंदगी के पल को, जियो जिंदगी के हर पल को, हर पल जी भर के जियो, मुस्कुरा कर हंस कर जियो। और आज जिंदगी की किताब के कुछ पन्ने लेकर आपके साथ हूं मैं, आपकी अपनी महफिल रंगे महफिल में, आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6। जी हाँ, 102.6 पर, दिल से दिल तक।

आप सुन रहे हैं रंगे महफिल आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक। मैंने वक्त को पूछा मेरा कसूर क्या था, वो हंसा और बोला तूने हर किसी को अपना समझा। और दोस्तों, कुछ हमारे दोस्त इस वक्त हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं विक्रम पाठक भागलपुर से, और कहते हैं कि ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें। क्या बात है, जब हम रंगे महफिल में आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है। वाह, बहुत खूब, आपका तहे दिल से स्वागत है। और फारूक अली खान, फैजिया फरहाज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। और श्याम सुंदर गोवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लिखते हैं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं, मालूम भी है कि ये मुमकिन नहीं, मगर एक आस सी रहती है कि वो याद करेगा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। जगजीत सिंह की आवाज़ में एक खूबसूरत गज़ल आपके नाम सभी सुनने वालों को।

ख्वाहिशों का समंदर था बहुत गहरा है, किनारे पर उम्र बीत गई सारी और हम बस रूठते गए रूठते गए। वो कहते हैं ना कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जगजीत सिंह की आवाज में ये खूबसूरत गजल आपके लिए चला रहा हूं। आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर दिल से दिल तक।

0: जी हाँ, वक्त तो लगता है, कुछ भी अच्छे काम करने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में भी वक्त लगता है। और आपके साथ हम बैठते हैं तो समय का पता नहीं चलता। समय हुआ है 11:36 और समय है एक छोटे से अंतराल का, तो कहीं मत जाइएगा। लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर चल रहा है रंगे महफिल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

कहते हैं कि खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, पर जिंदगी तो वही जीता है जिसको खुद पर विश्वास है। है ना दोस्तों, आपका क्या मानना है? आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल, और आपके साथ हूं मैं आपका दोस्त वीर तमन।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक। कहते हैं एहसास करा देती है रूह जिनकी बातें नहीं होती, एहसास करा देती है रूह जिनकी बातें नहीं होती, इश्क तो वो भी करते हैं जिनसे मुलाकातें नहीं होती।

और प्रेमचंद प्रेमी धामपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि नींद की झपकी लग गई थी बीच में, और लेकिन जब रंगे महफिल शुरू हुआ तो नींद खुल गई। क्या बात है। बारिशें अश्क दर्द का सैलाब ले आई, जिसमें छिपे थे जख्म वो किताब ले आई, और मुमकिन नहीं है दोस्त तुमसे हमारा मिलना, मेरे प्यार की हवा अब ये जवाब ले आई। क्या बात है। प्रेमचंद प्रेमी जी ने धामपुर से लिख कर भेजी हैं हमें पंक्तियाँ। आगे लिखते हैं कि राह में हम जिनकी पल पल फूल सा बिखर गए, दिल की हर एक किताब को वो अनसुना सा कर गए, मुस्कुराहटों पर हमारी उनको देना था सिला, शायद मेरी आंखों को यूं आंसू से भर गए। क्या बात है प्रेमचंद प्रेमी जी, दिल से लिखते हो और दिल तक पहुंचते हैं। ये पंक्तियां जो है ना, सच में दिल तक पहुंचती हैं। थैंक यू सो मच। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर दिल से दिल तक। और हमारे साथ जोया जुड़ी हुई है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। लिखते हैं कि इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं प्रोग्राम सुन रही हूँ रंगे महफिल। 22 अप्रैल 2026 से हमारी ये जर्नी शुरू हुई थी आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ, और आज इन प्रोग्राम्स और आपके शो सुने बगैर हमारा दिन नहीं कटता। सारा दिन बहुत अच्छे से गुजरता है, बहुत अच्छा लगता है, और पता ही नहीं लगता कि समय कैसे बीत गया। रेडियो की यही तो खासियत है। और इस बार 90 साल सेलिब्रेट कर रहा है 8 जून को हम आकाशवाणी के पूरे 90 इयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप सभी को ढेरों बधाइयां। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कन्नौर से आदिल कमार तस्दीक अली मुजफ्फर अली, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर दिल से दिल तक। और फिलहाल आपके लिए खूबसूरत गीत लेकर आया हूँ फिल्म पापा कहते हैं से, कुमार सानू की आवाज में, दिल तक जाता है, दिल से सुनिएगा। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर दिल से दिल तक।

जरा सी जिंदगी है, अरमान बहुत हैं, हम दर्द नहीं कोई इंसान बहुत हैं। दिल का दर्द सुनाए तो सुनाए किसको, जो दिल के करीब है वो अनजान बहुत है, वो अनजान बहुत है। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं रंगे महफिल, और सनी कपूर जर्मनी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी तहे दिल से स्वागत है। सुदर्शना मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका भी तहे दिल से स्वागत है। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर दिल से दिल तक

जी हाँ, ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है। और कहते हैं ना कि मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, बरसों लगते हैं जिंदगी बनाने में, और जिंदगी फिर भी कम पड़ती है रिश्ते निभाने में। अब अपने दोस्त वीर धवन को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए सफर पर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और जिंदगी से हाथ मिलाते रहिएगा। अब अपने दोस्त वीर धवन को दीजिए इजाजत, तब तक बाय, शुभ रात्रि।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय में बेहद उत्साह है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय द्वारा यह आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामलों से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान मामले में जारी किया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले की आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय के में दायर याचिका को में से एक में से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। प्रख्यात मणिपुरी नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और तीन एक दिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उप कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल 1 दिवसीय टीम की भी कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उप कप्तान होंगे। उधर आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की

टिकाऊ पारी खेली। 221 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने अंतिम ओवर में जीत हासिल कर लिया। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जु राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय द्वारा यह आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान मामले में जारी किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। लोकसभा से कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा और डॉ निशिकांत दुबे को समिति में शामिल किया गया है। वहीं राज्यसभा से विनोद श्रीधर तावड़े, सुजीत कुमार और उज्जवल देव राव निकम समिति के सदस्य हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रख्यात मणिपुरी नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में ये सम्मान प्रदान करेंगी। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। 221 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते 225 रन बनाए। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जो राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि

0: इन नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी परीक्षा की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जाँच तेज कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आर्यकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार की सेवाओं और पदों में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 66 श्रेणियों की नई सूची अधिसूचित की है। इसके साथ ही ओबीसी ए के लिए 10% और ओबीसी बी के लिए 7% आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आएंगे। उनकी यह पहली भारत यात्रा होगी। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि भारत अगले सप्ताह क्वाड समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। इस समूह में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू की चेतावनी है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। 221 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते 225 रन बनाए। आज कोलकाता के ईडन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी रेनबो पर अब समय हुआ है 2:06 और अब वक्त है हमारे एक और कार्यक्रम का जिसका शीर्षक है भुलाए ना बने। तो आइए सुनते हैं कुछ कभी ना भुलाए जा सकने वाले गीतों को।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: मरियम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।

हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

में करके स्नान आई, बिछड़ा वो मीत आया, जीवन का गीत आया, दो आत्माओं के मिलन का दिन पुनीत आया।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूती प्रदान करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार जुराव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इस वर्ष मार्च तक भारत ने अपने ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का लगभग पूर्ण विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। इसके साथ ही भारत यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे प्रमुख रेल नेटवर्क वाले देशों से आगे निकल गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना 1 जून से लागू होगी। 25 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी। लक्ष्मी भंडार योजना की मौजूदा लाभार्थियों को स्वतः इसमें शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि जिले को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। और खेलों में IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। 221 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते 25 रन बनाए। आज कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उधर मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है रात्रि के 3:05 और 55 सेकंड्स, और लीजिए पाए सुनते हैं कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज। कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: मंगल भवन मंगल हारी,
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
8: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं, इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
9: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी, वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

मिडनाइट मेलोडीज के अंतर्गत आप सुन रहे थे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में सुबह का 4 बजने जा रहा है। कुछ ही पलों में अब आप समाचार सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जुन राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इसके साथ ही भारत यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे प्रमुख रेल नेटवर्क वाले देशों से आगे निकल गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता दूर करने की कोशिश की जा रही है और इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक

सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना 1 जून 2026 से लागू होगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय आर्जिकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि जिले को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत की 4 दिन की यात्रा पर आएंगे। उनकी यह पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने कहा है कि भारत अगले सप्ताह क्वाड समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। इस समूह में भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलेगी। वहीं खेलों में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। समय हो रहा है स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 4:05 और लीजिए आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम सारेगामा। इसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक और मैं हूं आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब

0: दीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा है इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू

कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

सारेगामा ये कार्यक्रम अभी श्रोता सुन रहे थे, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह का 5 बजने जा रहा है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, बनी रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।